0: अत्र मे गीतेर पादक मतने किशोर कुमार महात्म्य ये जीवन गीत है
1: हिंदी तनु
0: ओ हिंदी तनु कितकोट अत्र किशोर कुमार महात्म्य नोदवनी वेन्न अत्र ज्योतिपाल महात्म्य गायना करना है ज्योतिपाल महात्म्य गीते कहने भविष्य के गैम्बुर होना ज्योतिपाल महात्म्य गीते फील करने विधि दैत दैत बंदे लंदी मट पेवादरे ये फील मट इतना ये तो पटक फील कराना तो होता ही गलत
2: ज्योतिपाल महात्म्यागी गीत तोरगन्ना कियन्नेम चैलेंज एकक मुलिम कियन्न एक ए विधियटम गनल्ला तिब्बा रिजल्ट कियपु विधियट अर पॉइंट एक अदा गत्तना इदिरियट

भावे शोक रोग भय अनतुरु अमनुष्य उपद्रव राज भय सुर सतुरु खरदर गिनी बिय तिरिसंगत सतुंगें सिदुवन सियलु उपद्रव दुरिं तुरु वेवा।